नमस्कार श्रोताओं, आपकी दोस्त तृप्ति आपसे एक बार फिर से जुड़ने के लिए रूबरू हो रही है। ये आकाशवाणी का शिलोंग केंद्र है, मीडियम वेव 347.2 मीटर अर्थात 864 किलोहर्ट्ज पर। तो श्रोता दोस्तों, अगले 30 मिनट के लिए हमारे साथ जुड़िए और बेहतरीन नगमों का लुत्फ उठाइए इस भीनी भीनी बारिश के मौसम में। तो चलिए आगाज करते हैं बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ, सोनू निगम और अलका याग्निक की युगल आवाजों में दोस्ती फिल्म से। ये गीत सुनेंगे, समीर गीतकार हैं और नदीम श्रवण ने इसको संगीतबद्ध किया है।

खूबसूरत संगीत देकर उस गीत को और भी बेहतरीन बनाया है। सुरेश वाडकर और मोहम्मद अजीज की आवाजें हैं घराना फिल्म से।

तो हमारे श्रोता दोस्तों ने बहुत ही खूबसूरत सा सदाबहार गीत सुना चाहूंगा मैं तुझे। दोस्ती फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी जिन्होंने लिखी ये बेमिसाल गीत के बोल, साथ ही इसको और खूबसूरती से संवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत ने। तो बहुत सारे प्रीत की कहानियां कहता हुआ ये गीत हम सबके दिलो दिमाग में बसा हुआ है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से मीडियम वेव 347.2 मीटर अर्थात 864 किलोहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं रिमझिम। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम का, इश्क होठों से। फिल्म का नाम है जो हम चाहेंगे। तो इसमें आवाजें दी है के और श्रेया घोषाल ने, सचिन गुप्ता का संगीत है और कुमार के बोल हैं।

तो हमारे श्रोता दोस्तों का इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि आज ही चॉइस का समय हो गया है। तो चलते चलते खूबसूरत सा गीत हम अपनी पसंद का श्रोताओं तक पहुंचाएंगे, और हमारी पसंद का गीत है अनजाना फिल्म से मैं राही अनजाना। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत है अनजाना फिल्म से, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का सुपरहिट संगीत इस गीत को और भी खूबसूरत बना रहा है। जिंदगी का फलसफा कहता हुआ ये गीत कहीं ना कहीं मेरे दिल के बहुत करीब है। तो चलिए आप भी सुनिए हमारी पसंद का ये गीत।

तो हमारे श्रोता दोस्तों से यहीं पे विदा लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे स्टूडियो की घड़ी समय दिखा रही है कि आपसे विदा लेना ही पड़ेगा। ये वक्त हमारे और आपके बीच जरूर आके खड़ा हो जाता है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं 2:30 पर एक बार पुनः हाजिर होंगी और प्रभु भक्ति और देशभक्ति भरे गीतों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त को विदा। नमस्कार।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Kadegadeka Akashwani Shlong Mwanj Pio Lispa Sopin Yau Point R meters, medium wave ubiering Kardubaru Praspan Rip Sau kilohertz, but Kumju Ro Haka News on Air App but DTH. Paralog Nong Snap Naganika Station, Haganika Por, Nipiang Smob Hai Pibaro, Shaka Program, Jing Hikai Agakatin Hindi, but Inong Hikai Idei Sing Kiltam, Tungin Snap Yakanika Program.

0: नमस्कार, मैं हूं विनीता और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शिलांग केंद्र।
1: खुबले ये फी बरो के परलोक नोंसंगम nga we sing khu tam nga don rengat hang ne bat ikong vinita bat class dang man sngap ya ka all india radio shillong।
0: और इस वक्त हम सुनते हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम, उसका नाम है हिंदी लेसन।
1: बात मंता हकने का क्लिप मत निपन सिंह शफी या का प्रोग्राम हिंदी लेसन।
0: तो श्रोताओं, हम इस बात को आपको बता दें कि हिंदी लेसन में हम आपको खासी और हिंदी, ये बायलिंगुअल प्रोग्राम है जिसमें खासी से हिंदी और हिंदी से खासी आपको हम कुछ जानकारी देते हैं।
1: परलोक नोंसंगाप कुंबा फिला तिप ही बाहगने का प्रोग्राम निपन सिंह शफी निपन सिंह शफी या का प्रोग्राम का बंगिन क्रेन हकतीन हिंदी बट हकजू कपोर हकतीन खासी।
0: तो ऐसा है सिंह कि हम हिंदी हो चाहे खासी हो चाहे अंग्रेजी हो, इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि हमें म्यूजिक बहुत अच्छा लगता
1: है। हो आज परलोक ते कुंबांगी तिप ही बा लदे कनो कनो रुकतीन लगा हिंदी ने।

0: nakakitin kasine lakakitin English ru henrei ka ei pat ka balong kaju la ne ka bangi ngila banong ka balong common ka dei ka music.
1: तो जब म्यूजिक की बातें हो रही हैं, तो आज क्यों ना हम अपने श्रोताओं को कुछ ऐसी बातें बताएं कि उन्हें एक बहुत ही म्यूजिकल जर्नी में जाने का मौका मिले.
0: ते परलोक कुंभंगी यक्रेन ही हलोर का जिंगपुर जिंगतेम की जिंगरवाई लने का म्यूजिक ते कभाए यंगी मंता कसंगी बंगिन क्रेन शपहंग किने ही की जिंगपुर जिंगतेम शपहंग की जिंगरवाई.
1: बहुत खूब. तो म्यूजिकल जर्नी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि शिलोंग के परिपेक्ष में अगर हम सोचें तो एक ऐसा गाना जिसमें हम नेचर की बातें करते हैं, यानी कि एनवायरमेंट की बातें करते हैं और कितना खूबसूरत है हमारा शिलोंग, इसकी बातें करते हैं, हमेशा ही करते हैं. तो इस गाने में काफी कुछ आपको ऐसा ही फील आएगा.
0: ते परलोक मंता हकने का प्रोग्राम निन्यक्रेन शफंग का वही का जिंगरवाई कबाबून डक जिंग इतना जोंग का मारियंग कुंभंगीडोन हंगने हा कनोंग बा शिलोंग निते बकनो कलोंग कबडोन कम कनो कलोंग कबकोडोर ए यंगी का जिंग इतना जोंग का मारियंग बट हकने का जिंगरवाई कबंगिन यक्रेन मंता किडोन शिबून कि जिंग इतना जोंग का मारियंग कि बपिंसा यो बंसंगेव.
1: तो इस बात से तो हम नकार नहीं सकते, वी कांट रिफ्यूज, कि कोई भी गाना जो होता है, जो लिरिक्स होता है, वो काव्यात्मक होता है, वो कविता की तरह होता है. तो आज हम बातें करेंगे कविताओं को किस तरीके से आप समझें और उसको कैसे बोलेंगे.
0: ते परलोक हबंगी यकरन शफंग की जिंगरवाई की जिंगपुर जिंगतेम फिला अरु बनते बा की जिंगरवाई की दे कवेरु करुकम लने कवेरु कबंगी खोट का पोइट्री ते कुमनो कलोंग का पोइट्री मंता खंडियन निन बताए शपंग का जिंगलोंग जोंग का पोइट्री हाकने का प्रोग्राम.
1: तो जो ये कविता हम लोगों ने उठाया है उसके बोल हैं, मैंने एक गीत लिखा है जो तुमको सुनाती हूँ.
0: ते मंता कने का पोइट्री का बंगिन यक्रेन हलोर जोंग का कलोंग का मैंने एक गीत लिखा है जो तुमको सुनाती हूँ कबमुद ngalatho iwei jingruai ibangakwa banpan sngap shaphi.
1: और इसके आगे के बोल हैं, खोए हुए रंगीन ख्वाबों को सांसों से सजाती हूँ. इसका मतलब है खोए हुए रंगीन ख्वाबों को, मतलब आप जो सपना देखते हैं, जो ड्रीम करते हैं, वो सारा नेचर से जो जुड़ा हुआ आप देखते हैं, वो इतना खूबसूरत होता है कि उसको आप कैसे अपने आंखों से देखकर सजाते हैं.
0: ते परलोक का बार पट का लाइन कलोंग खोए हुए रंगीन ख्वाबों को आंखों से सजाती हूँ. जिंगमुद कि जिंग फो स्नेव जोंगी कि ए की ए की बा लदांगी फो स्नेव लदांगी पेट दका बा लिप का खमत नी पेट दका खमत जोंग का मनसीम ते नी लोंग की बा जा हा कता का जिंग फो स्नेव ते या किता नी ngala pen bej pen biang la nenga pen bha dala ka jong ka men sim.
1: तो चलिए पहले तो हम लोग इस गाने को सुन लेते हैं, उसके बाद हम उन बच्चों से मुखातिब होंगे जो और भी जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से पोइट्री रिसाइट करें.
0: ते प्रलोक मंता निन स्ngap यकने का जिंगरवाई बट हदीन बंगला यो स्ngau यकने का जिंगरवाई निन सयकरन ब्यांग बा कुमनो निन ओंग करुकम ओंग यका पोइट्री करुकम पुले यका पोइट्री लने करुकम बु हलोर की नोंग स्ngap शपंग की नोंग स्ngap लने कुमनो बकी नोंग स्ngap किन स्ngau तनन यका पोइट्री जोंगी हकनो करुकम निन पुले यका.
1: तो पहले ये गीत जो कि अनुराधा पौडवाल ने गाया है फिल्म ये नजदीकियां, इस गाने को सुनते हैं, उसके बाद आपसे बातें होंगी.
0: ते परलोक ना का फिल्म ये नजदीकियां लशिम यकने का जिंगरवाई बट इनोंगरवाई इबा लपाउनाम्हा इदे इ अनुराधा पौडवाल.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस गाने को आपने सुना और गाने के बाद हम आपको ये बता दें कि हमने ये आपको प्रॉमिस किया था कि बताएंगे कि बच्चों को किस तरीके से पोइट्री रिसाइट करना है।
1: परलोक नंसगाप निप्रियंग सोभाब यंग यपी सशिसिन बात कुंबांगिला ओंग यपी मने बांगिन कुमनोंगिन बताए बन पुले या का पोइट्री।
0: तो ऐसे ही आपने ऐसा देखा होगा कि छोटे बच्चे जब बाबा ब्लैक शीप भी करते हैं तो उसमें एक राइम होता है, जैसे कि बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, है ना।
1: ते परलोक कुमाफिले यो स्नो बा लडागी खनारित कि ओंग लने के रुवा या इनो इनो जिंग रुवा लने या इनो इनो राइम सरु कि डन कि जिंग पनबुट सुर कि डन लकी जोंग कि सुर कि बपन स्नो तनन या कि बाकिन पुले बट परो हकजू कपोरु या कि नोंग स्नप।
0: तो इसी तरीके से अगर हम और भी देखें कि बाबा ब्लैक शिप के अलावा और भी जो नर्सरी राइम्स हैं उन सब में एक रिदम होता है ना बच्चों।
1: हाँ, प्रलोक बोन की पोइट्री लने की राइम्स की बा की खनारित की शायद पुले हंगता की डोन लगी जोंग की जोंग की सूर की डोन लगी जोंग की जोंग की रुकम किन्नो।
0: तो दूसरा नर्सरी राइम हम लेते हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आप इसको जब सुनेंगे तो जाहिर है पूरे बच्चे, कहीं के भी बच्चे होते हैं वो इसी अंदाज में गाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार।
1: कुमकवे का राइम का बाकी खनारित की शायद पुले भा हाकी स्कूल जंकी हाकी नर्सरी लने हाकी केजी क्लास जंकी कदे का ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कबाह का खासी निला बनोंग तंगशान तंगशान क्लोर बरित करुकम ओंग या कनेरु कटनो कजिंग सोतनात बनोंग या कने या इने इराइम।
0: तो थोड़ा सा इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। नर्सरी राइम में ही अगर हम आपको ये बता दें कि जॉनी जॉनी यस पापा या फिर रेन रेन कम अगेन अनदर डे, अगर इसको बता दें तो ये सारे के सारे नर्सरी राइम बिल्कुल उसी स्टाइल में बोले जाते हैं, चाहे वो आप कहीं भी सुने, देश के किसी भी स्टेट में सुने या फिर विदेशों में सुने, लेकिन लगभग राइम वही रहता है।
1: ते परलोक कुमाफिला यो स्नो बा बुन नकी राइम्स की बा लडा पुले शनो शनोरु हकनो कनो करीरु हकनो कनो का जकारु किलोंग की जू ही किरुकम कन उत्सुर किरुकम ओश्रोंग या की जिंग थो किरुकम कन्नो या की किलोंग की जू ही नमर बले नमर की खनारित कि खम स्नो तनात ही बन करें लने बन पुले या की जिंग पुले जोंकी लने या की ए रू

0: बात कर रहे हैं वीर रस की कविता को, तो उसको कभी भी हम वैसे रिसाइट नहीं करेंगे जैसे नर्सी राइम को करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं वीर रस में इस कविता की, चमक उठी सन 57 में, तो एक स्ट्रेंथ के साथ हम बात करेंगे, एक पावर के साथ बात करेंगे।
1: ते परलोक निन फाई सकवे पटकल्यांग बा कुमनो निन पुले या का पोइट्री का बडन किजिंग याले लने किजिंग याले थमा kabadon kijingya sho kabadon kijingya khi te kumya kita ki poetry bangin pule kumbangi pule ya ki rhymes te kamla banlong te ya kumya kita ki poetry nihap ban pule hi dak bapen mi bor nihap ban pule hi la kumbangi ru ngidon lang hakata kijingya le ngiru ngidon lang hakata kamadan yale
0: aur deshbhakti ki agar baat kare to insaaf ki dagar pe bachchon dikhao chalkar, तो इन सब देशभक्ति गीतों में जो फ्लेवर है वो एक अपवर्ड जाता है, उसमें जो एक फ्लो है वो अपवर्ड जाएगा। आप कभी भी उसको यूं धीमे धीमे नहीं बोल सकते और उसमें वो पावर नहीं डालेंगे तो वो कविता का रिसाइटेशन की ब्यूटी नहीं आएगी। अगर हम इसी को बोले इंसाफ के डगर पे, तो ये कहीं से भी आपको अपील नहीं करेगा। लेकिन अगर हम आपको एक शक्ति के साथ बोलेंगे इंसाफ के डगर पे, एक स्पीड के साथ, तो ये डेफिनेटली कविता रिसाइटेशन का एक बेस्ट फॉर्म होगा।
1: ते परालोक हकालियंग जोंग की जिंगरवाई इज रीरो निहाप बन पुले यकी लने निहाप बन रवाई हकता का रुकम खनंग बा कि नोंग स्नप लने mangiru ki barwai lane ki bapule ya ka poetry jirwai idri ngin snow tenan ngin snow ba kata ka jing idri jongi kami nadu mensim kadai karukom pule hakata karukom ba ka jing keno ya ki sur lane ka jing ong ya ki sur kanang kiu nang kiu knang babale ka jing idri jongi kam dai banang hier nare ka jing idri kadai banang kiu be।
0: तो ये तो बातें हो गई वीर रस की, लेकिन हमने एक बहुत ही वीर रस और देशभक्ति रस के बाद जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सबके लिए आवश्यक है वो है भक्ति रस। यानी कि जब हम चर्च में जब आप हिम सुनते हैं या फिर मंदिरों में आप भजन सुनते हैं तो उसका जो एक मूड होता है वो बिल्कुल अलग होता है, तो उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे।
1: हदीन कने कजिंग पुले lane ka jingruai ya kine ki jingruai ijri ya ki jingruai kine ki jingruai yasho ki jingruai yale thma tengin phai sa shakawai ka liang kata ka dei ka jaj poetry ka bangi mane lane ngi kren i ya uno uno lane ya ino ino ibangi sngau bha ban buram te kumya kata ka jing pule ngidon kam bha kata ka jing sngau ka jing sngau i kajing shania kenang ba napo mensim jongi hakasur jongi ru nginyo sngau ya kata kajing i bat ke kajing ngej ke bangidon।
0: तो इतनी अच्छी बातें आप ऐसे ही बता रहे हैं हमारे बच्चों को, हमारे लिसनर्स को, तो जाहिर है वो आपको बहुत पसंद करेंगे इस कार्यक्रम को भी। और हम उनको थोड़ा सा और, जैसा कि हमने कहा था, प्रॉमिस किया था कि हम उनको बताएंगे कि हिम्स यानी जो चर्च में गाए जाते हैं कॉयर जब गाता है या फिर जो हमारे यहाँ ग्रुप सॉन्ग होते हैं भजन्स होते हैं वो किस तरीके से अलग होते हैं। इनमें बहुत कुछ जो भक्ति रस होता है इसमें बहुत प्यार होता है और एक डिवोशन होता है, और यही बातें आप गाने के जरिए लोगों तक पहुँचाते हैं। और इसमें एक सॉफ्टनेस होगा, बहुत डिवोशन के साथ साथ एक प्यार होगा जो कि आपका भगवान के लिए, जीसस के लिए, अल्लाह के लिए होता है। अगर इन सब बातों का ध्यान देंगे तो एक बेहतरीन आउटकम होगा।
1: ते परलोक कुमा फिलायो स्नेव बाबून न की जिंगरवाई की बा निला बन ओंग की जिंगरवाई नियम लने की जिंगरवाई ईद ब्ले लाकी दे की बरवाई डाकी हिंदू लने डाकी मुस्लिम लने डाकी क्रिश्चियन कंपेयर namar kirwai kipen sngau kipen shai yala ka jong ka jingngej yala ka jong ka jing i ha uta u borba lane ha kata ka borba ka baki sngau tenat ka baki sngau shngat te kumnya kita ban pen i ya ka e ka bapidon na po mensim pihab ban ruai ha kata ka rukam।
0: तो देखिए ये बहुत सारी जानकारी हमने आज दी, लेकिन ये सिलसिला हम आपको अगले एपिसोड में भी बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन अभी इस वक्त हमारा ख्याल है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इस पर और आगे बातें करेंगे। हम आपको गाने के, पोएट्री के, रिसाइटेशन के और भी नए नए ढंग बताएंगे।

0: और किस तरीके से वो आपको आपकी लाइफ में एक कलर ला देता है ये भी आपको बताएंगे।
1: ते परलोक नंग स्ंगप कुम्बका पोर कदुना कदबा किजिंक्रेन पत किबुन ते डंग बुन ही किए किए कि बंगिक्वा बन या क्रेन बन या फ्लूजिंग मोट लने बन बताई या फी शफंग की रुकम पुले या किजिंग रुवाई शफंग की रुकम पुले या कि पोइट्री लने शफंग का रुकम रुवाई कुमनो बफिन स्नेव बफिन पन स्नेव या के ए के बफिदन हदनु जोंग फी लेंगबा कि जिंग रुवाई लेंगबा कि पोइट्री शा कि नौ स्ंगप ते हकवे पद का प्रोग्राम निन या कंदु ब्यांग बत फी निनिया सेसेम निनिया सेम ब्यांग खनांग बा निनक्रेन शिबुन हालोर कुमकिने की जाय पोइट्री।
0: तो अब हमें दे इजाजत, नमस्कार।
1: दे प्रलोक बरो ngा ओ एसिंग ख्युतम ngadon rengkat hangne bat i kong vinita ni ai khuple ya phi bat ngin ya shembyang bat phi hakawai pat katayo ko banwan khuple shibun।

0: affecting many areas. A report.
1: The southwest monsoon continues to remain active in Himachal Pradesh, with widespread rainfall affecting normal life in Shimla, Solan, Sirmaur and several other parts of the state. Pachad in Sirmaur district recorded the highest rainfall of 207 mm since last night. Heavy rainfall has led to a rise in the water levels of the rivers and streams, prompting the administration to advise people to remain cautious and avoid venturing near water bodies. As a precautionary measure, all educational institutions in Sirmaur and Solan districts have been closed today. Continuous rainfall has also triggered landslides in different parts of the state, while power and drinking water supply have been disrupted at several places.
0: In the FIFA World Cup, in the second quarterfinal tonight, Spain will face Belgium. India's women's cricket team will create history today when they play the first test match at the iconic Lord's Cricket Ground in London against England this evening. It will be the first ever women's test to be held at the Lord's. Led by Harmanpreet Kaur, India will look to make the occasion memorable in this historic encounter. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive shortly in Auckland on a two-day visit to hold talks with his New Zealand counterpart. Centre amends drugs rules to regulate high alcohol containing drug formulations. India strongly condemns conflict-related sexual violence at UNSC, describes it as tool of war and terrorism. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Uttarakhand today. In FIFA World Cup, Spain to face Belgium in second quarter-final tonight. And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. The details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की। इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
3: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी।
4: And we've always had a good close relationship with India playing hockey and the early Indian teams that came here 100 years ago.
3: 100 वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु।

0: भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
2: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
3: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
1: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के

0: लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनाव का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश सोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। शामिल किए गए अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
2: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा, वहीं नॉर्वे का सामना

इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारे सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत करती है आपकी दोस्त और होस्ट तृप्ति। ये है आकाशवाणी का शिलोंग केंद्र, मीडियम वेव 347.2 मीटर अर्थात 864 किलो हर्ट्ज पर। तो अब समय हो चला है कार्यक्रम गुलशन गुलिस्ता का। तो खूबसूरत से प्रभु भक्ति और स्तुति लिए हुए भजन और साथ ही देश की आन बान शान से भरे हुए गीत आप तक पहुंचाएंगे। तो यूं ही हमारे साथ जुड़िए और कार्यक्रम का आनंद लीजिए। तो पहला गीत है मैं तो सांवरे के रंग रांची। जी हाँ, श्याम सुंदर की स्तुति करता हुआ, उनके प्रेम में डूबा हुआ ये गीत सुनेंगे अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की गूंज जब गूंजती है और खूबसूरत आवाजें हों तो अलग ही पूरा वातावरण हो जाता है कि एक भक्तिमय वातावरण तैयार हो जाता है। तो हमारे श्रोताओं ने ये गीत सुना सुखविंदर सिंह और सलीम मर्चेंट, सुखविंदर सिंह और सोनू निगम की आवाज़ों के साथ साथी कलाकारों की आवाज़ें भी थीं, तो बहुत ही खूबसूरत सा शिव स्तुति भरा गीत। अगला गीत सुनते हैं सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और मारिन की आवाज़ों में, जग दे इंडिया का शीर्षक गीत।

तो अपने श्रोता दोस्तों को कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनवाएंगे जोधा अकबर से। खूबसूरत सा मुरली बजाने वाले यानी हमारे श्याम सुंदर की स्तुति भरा ये गीत सुनेंगे बेला शिंदे की आवाज़ में। जोधा अकबर फिल्म है और साथ ही एआर रहमान से संगीत से भरा हुआ ये भजन जावेद अख्तर के बोल।

चलते चलते आपकी दोस्त तृप्ति यही कहना चाहेगी कि जो भी हम प्रभु कृपा से हमको प्राप्त है वही पर्याप्त है, क्योंकि एक बेहतरीन जिंदगी के लिए ये सकारात्मक दृष्टिकोण हम सबके लिए जरूरी है। तो इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त को विदा, शाम की सभा में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य पुरावशेषों की सफल वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुरावशेषों की वापसी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहर को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां भारत लौट चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता शाखाएं बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा का निर्माण किया गया है और अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया

0: जाना चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के दौरान निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को लागू करने के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी वाले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। दिल्ली मंडल के रेवाड़ी दिल्ली और शाकुर बस्ती भटिंडा खंडों पर कवच प्रणाली का चौथा चरण लागू किया जाएगा। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र लोकोमोटिव के तय समय पर होने वाले सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचना स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कैच द रेन अभियान की गति को बनाए रखने के आह्वान किया था, जिसके बाद बालोद जिला जल संचयन जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने प्रस्तावित 8 वनों में से कम 20% वृक्षारोपण औषधीय पौधों की प्रजातियों के लिए समर्पित करने या 2 वनों को समर्पित औषधीय वनों के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ विशेष श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ परिचर्चा प्रसारित होगी। ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड पर आज शाम 5:10 पर प्रसारित की जाएगी। इसे News on AIR ऐप और News on AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। इसका पुनर्प्रसारण कल सुबह 9:10 पर होगा। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 101 रन बना लिए हैं। यह पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान महिला टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आज ब्रिटेन के आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़ेरेव और यानिक सिनर का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। कल कैरोलिना मखोवा और लिंडा नुस्कोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi arrived in Auckland today on the final leg of his three-nation tour, where he received a warm ceremonial welcome from New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The two leaders shared a warm embrace as Prime Minister Luxon personally received Mr. Modi on the red carpet at Auckland Airport. Prime Minister Modi was accorded a ceremonial reception on the tarmac with representatives of the Indian and New Zealand Armed Forces in attendance. Mr. Modi will hold talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. Both leaders will review the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last 2 years, especially in the areas of trade, commerce and defence. The visit to New Zealand is the first visit by an Indian Prime Minister in 40 years. Earlier, Prime Minister Narendra Modi officially concluded a historic high-stakes state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced the diplomatic, economic and security ties between the two democratic giants. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the government and people of Australia, as well as Australian Prime Minister Anthony Albanese, for the warm hospitality during his visit. In a social media post after his Australia visit concluded, Mr. Modi said the outcomes of the visit

यह है आकाशवाणी का शिलांग केंद्र मीडियम वेव 347.2 मीटर अर्थात 864 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे श्रोता दोस्त हमारे साथ जुड़ेंगे कार्यक्रम एक ही संगीतकार के गीत। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत एक ऐसे संगीतकार जिसने हर अंदाज में बनाया अपना मुकाम। जी हाँ दोस्तों, आज सुनेंगे हम गीत आनंद राज आनंद द्वारा संगीतबद्ध। जब भी बॉलीवुड के 90s दशक के आखिर और 2000 दशक की शुरुआत के सुपरहिट गानों की बात होती है तो एक नाम हम सभी के दिमाग में आता है, वो नाम है आनंद राज आनंद का। तो चलिए, बातें तो ढेर सारी करेंगे लेकिन साथ में खूबसूरत से गीत भी तो सुनने हैं। तो पहला गीत सुनेंगे आप मुझे अच्छे लगने लगे, एक हिंदुस्तानी से, और आवाज़ ही है उदित नारायण अनुराधा पौडवाल ने, और इस गीत के गीतकार है आनंद बख्शी।

तो दोस्तों, दिल्ली में जन्मे आनंद राज आनंद एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में ही नहीं काम किया, बल्कि वो एज ए गीतकार भी है और एज ए सिंगर भी उन्होंने काम किया। सबसे खास बात तो ये है कि वे एक ज्वेलरी व्यवसायी परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपने संगीत के सपने को पूरा करने के लिए पारिवारिक कारोबार को छोड़कर मुंबई का रुख किया। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत।

तो हमारे श्रोताओं आपसे बात कर रहे हैं आनंद राज, आनंद संगीतकार की, जिनकी शुरुआत हुई, कैरियर की शुरुआत हुई फिल्म मासूम से, और जिसका गीत छोटा बच्चा जान के आज भी लोगों की जुबान पे रहता है। आनंद राज, आनंद ने परदेसी बाबू हद कर दिया आपने, जिस देश में गंगा बहती है, कांटे मुसाफिर, वेलकम, शूट आउट एट लोखंड वाला, डबल धमाल जैसी फिल्मों में यादगार संगीत दिया। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

तो दोस्तों, आज के संगीतकार आनंद राज आनंद के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उनकी संगीत की जो एक खूबसूरत सी विशेषता रही है, चुलबुले गीतों का एक पिटारा रहे हैं वो, जैसा कि आप सुन ही रहे हैं हमारे गीत आज के, तो उनके संगीत में पंजाबी लोक धुनों की ऊर्जा, आधुनिक बीट्स और मधुर सुंदर धुनों का बहुत ही खूबसूरत सा मेल देखने को मिलता है।

0: तो दोस्तों उनका संगीत निर्देशन ही नहीं, उन्होंने कई लोकप्रिय गीतों को अपनी आवाज भी दी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में शामिल हो गए जो एक साथ संगीतकार, गीतकार और गायक की तीनों भूमिकाएं निभाते रहे, इसीलिए वो कुछ अलग पहचान बना पाए। तो बहुत सारी सुनहरी यादों को ताजा कर जाते हैं 90s और 2000 के दशक की। तो इन्हीं उनकी धुनों में जो ताजगी, जोश और अपनापन है, वही उन्हें भीड़ से अलग कर जाता है। तो ये इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत ग्रैंड मस्ती से।
1: रोशनी चाशनी है तो चाशनी,

तो हमारे श्रोता दोस्त हर बार की तरह एक चुनिंदा संगीतकार के बारे में आपको ढेर सारी बातें बताएं, साथ ही गीत सुनवाएं। तो अगले हफ्ते पुनः हाजिर होंगे एक और चुनिंदा संगीतकार के गीतों के साथ। तो अपनी दोस्त को दीजिए विदा, नमस्कार। कल पुनः ठीक 12 बजे एक बार फिर से उपस्थित होंगे। ये है आकाशवाणी का शिलांग केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: And then we can sell to further markets as well.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल

0: सदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4

0: दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: Pineapple Festival का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: ऑफ आर ऑर्गेनिक फार्मर्स टू बी एबल टू ग्रो बियॉन्ड द शोर्स ऑफ इंडिया टू फार रीचिंग इंटरनेशनल।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
1: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया के नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा
1: कनी गडे का आकाशवाणी शिलोंग परलोंग नोंगसंगप इवन पाइ बियांग शकनी का स्टेशन के जोंगी का आकाशवाणी शिलोंग हनि का पोर नि दन बन वन लंबियांग शफी एक प्रोग्राम कटा का लोंग प्रोग्राम किसुर की जिंग एक सॉन्ग ऑफ लव हंगिंग इन योर अपन पंतम शफी की जिंग रुआ ना की कोई तोर की पपाउ नाम जोंग करी का सी के जोंगी बांगिंग योर अपन पंतम ये पी की जिंग रुआ जोंग ई मोनाट शबोंग का ब्लाई कर टेंग को जूलिया का बबूत अंग ता का लोंग स्नोभा टेंग टेंग कन माओ यांगा कबला रुवाय दी राना खारकंगोर बट कुमजुरु कबबोत हादिन जोंगता लाय कटेंग हंगनु पिदन कबला रुवाय दई टीटी मुखिम